ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय

की धरती पे आकर एक छोटी सी नगरिया, एक अनजान सी नगरिया में देखिए साईं ने क्या क्या किया है।